ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। फ्रांस और स्पेन के जंगलात में लगी आग ने 3 लाख से ज्यादा अफराद को नकल मकानी पर मजबूर कर दिया है। हफ्ते के रोज मशरकी स्पेन में एक शख्स हलाक हो गया। ज्यादा दर्ज हरारत और खुश्क मौसम ने यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में आग को हवा दी है। फ्रांसीसी वजीर आजम सेबेस्टियन लिकॉर्नू ने हफ्ते के रोज सोशल मीडिया पर लिखा कि इस वक्त मुल्क भर में तकरीबन 30 मकामात पर जंगलात में आग लगी हुई है। हफ्ते के रोज फ्रांसीसी हुकाम ने मजीद 55,000 लोगों को इनखला का हुक्म दिया, जिससे मुल्क में नकल मकानी पर मजबूर अफराद की कुल तादाद कम अज कम 2.5 लाख हो गई। फ्रांस के जनूब मगरबी इलाके जिरोंडे में जंगल की आग जजीरा नुमा केप फेरेट के इर्द गिर्द फैल रही है, जो बोर्डो के करीब एक तफरीही इलाका है। फ्रांस के वजीर दाखला लॉरेंट नूनेज ने इतवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि 42,000 हेक्टर अराजी जल गई है। स्पेन में दारकूमत मेड्रिड के आसपास के इलाकों में हुकूमत की जानिब से जुमेरात को कौमी एमरजेंसी के ऐलान के बाद से आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। मुसलसल कोशिशों के बावजूद आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। एसोसिएटेड प्रेस का कहना है कि वस्ती स्पेन में तकरीबन 70,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मशरकी इलाके वेलेंसिया में हुकाम का कहना है कि मकामी जंगल में लगने वाली आग से एक शख्स हलाक हो गया। यूक्रेन में पैदा होने वाले एक सुमो पहलवान ने सैफरी की हतमी मुकाबले में गालिब रहने के बाद जुलाई के ग्रैंड टूर्नामेंट में अपने कैरियर की तीसरी टॉप डिवीजन चैंपियनशिप जीत ली है। सेकी वाके के तीसरे सबसे बड़े रैंक पर फाइज आओ नी शिकी वस्ती जापान के नागोया में 15 रोजा टूर्नामेंट के आखिरी दिन 2 शिकस्तों के साथ सबसे आगे थे। साथ ही सेकी वाके आतामी फुजी और ओजिकी का दूसरा सबसे बड़ा दर्जा रखने वाले किरीशिमा 3-3 शिकस्तों के साथ उनके बाद थे। टूर्नामेंट के आखिरी दिन इतवार के रोज आतामी फुजी ने आउनिशिकी को उखाड़े से बाहर धकेल दिया, जबकि किरीशिमा ने फ्रंटल फोर्स आउट के साथ फतह हासिल की। इसका मतलब ये था कि तीनों पहलवानों ने 12 फतूहात और 3 शिकस्तों के साथ टूर्नामेंट का इख्तिताम किया। बाद हजा उनके दरमियान हतमी मुकाबला हुआ, जिसमें लगातार 2 मुकाबले जीतने वाला पहलवान टूर्नामेंट का फातेह करार पाया। आतामी फुजी ने पहले मुकाबले में किरीशिमा को धकेल दिया, लेकिन आउनिशिकी ने दूसरे मुकाबले में आतामी फुजी को और तीसरे मुकाबले में किरीशिमा को रिंग से बाहर करके जनवरी के टूर्नामेंट के बाद अपना पहला एम्पायर कप जीत लिया। मगरबी जापान के ओइता प्रीफेक्चर के हिता शहर में मौसम गर्मा के रिवायती मेले में नफीस और रंगीन सजावटी अशिया से आरास्ता फ्लोट्स की परेड की गई। हिता कियोन फेस्टिवल का आगाज 300 साल से ज्यादा पहले बीमारी और आफात से बचाव के लिए हुआ था। यह यूनेस्को के गैर मरई सकाफती विरसे के तौर पर रजिस्टर्ड है। हफ्ते के रोज हापी कोट पहने हुए लोगों ने कबुकी और जोरूरी के रिवायती परफॉर्मिंग आर्ट्स के मनाजिर की अक्कासी करने वाली शख्सियात से मुजयन फ्लोट खींचे। मामेदा उआमाची इलाके के एक फ्लोट के पिछले हिस्से को तकरीबन 3 ज़रब 1.3 मीटर

0: टाइल से मुजयन किया गया था। इसमें कढ़ाई के जरिए बनाई गई सुनहरी कार्प मछली को तलुए आफ्ताब के वक्त आबशार की मुखालिफ सम चढ़ते हुए दिखाया गया था। कहा जाता है कि यह 1840 में बनाए गए अब मतरूक टेक्सटाइल की नकल है।
1: अब आज की चंद अहम खबरों की सुर्खियां समाप्त फरमा लीजिए। अमरीका के एक खबरसा इदारे ने खबर दी है कि मशरक वस्ता में आला अमरीकी फौजी कमांडर ने आबनाए हुर्मस के गिर्द बमबारी की कार्रवाई रोकने की सिफारिश की है। अक्सियोस ने इतवार के रोज दो जराए के हवाले से बताया कि एडमिरल ब्रेड कूपर ने पेंटागोन, ज्वाइंट चीफ्स और व्हाइट हाउस को सिफारिशात पेश की हैं। यूक्रेन का कहना है कि उसने बहरे कैस्पियन में रूस और ईरान के दरमियान फौजी सामान की तरसील के लिए इस्तेमाल होने वाले बहरी जहाजों पर हमले किए हैं। और फ्रांस और स्पेन के जंगलात में लगी आग ने 3 लाख से ज्यादा अफराद को नकल मकानी पर मजबूर कर दिया है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और वीडियोज के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu।

0: बात के बारे में भी बताएं।
1: फुरानो में लवेंडर के खूबसूरत खेत एक मकबूल मकाम है। जुलाई में पहाड़ी ढलानों पर तहद निगाह हल्के उदय रंग का कालीन सा बिछ जाता है।
0: वाह, ये मंजर तो वाकई खूबसूरत होगा।
1: यकीनन। इसके अलावा यूनेस्को के आलमी कुदरती वरसा मकाम शिरेतोको में गिलहरियाँ और लोमड़ियाँ वगैरह जंगली हयात की बेशुमार अकसाम पाई जाती हैं। अगर आप कश्ती का टूर लें तो वेल मछलियों और भूरे रीछों का नजारा भी मुमकिन है।
0: सुगोई, हैरत अंगेज। वैसे होकाइदो की सर्दियाँ तो मुंजमद कर देने वाली होंगी।
1: जी हाँ, सर्दियों में वहाँ शदीद बर्फबारी होती है और दर्जे हरारत मनफी होता है, लेकिन इसी वजह से बर्फ मेले या सरमाई खेलों से भी लुत्फंदोज हुआ जा सकता है। और असाहिकावा शहर के असाहिया चिड़ियाघर में बर्फ पर कतार में चलते हुए पेंगुइन भी देखे जा सकते हैं।
0: शानदार। बस तो फिर होकाइदो को मैंने उस फहरिस्त में शामिल कर लिया जहाँ मैंने मुस्तकबिल में जाना है।
1: होकाइदो के खाने भी शानदार हैं। सिर्फ समंदरी खुराक ही नहीं बल्कि वहाँ रामेन और मटन की डिशें भी मकबूल हैं। इसके अलावा होकाइदो ताज़ा सब्जियों और फलों के लिए भी जाना जाता है। वहाँ के युबारी खरबूजे, मकई और आलू खसूसन मशहूर हैं। होकाइदो का सफर हर लिहाज से पुरलुत्फ होगा।